0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेरवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी

0: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी

0: के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों

0: और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में

0: दो दो मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में एक एक मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइया ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पीकू फिल्म का गीत। इस गीत के कलाकार जो हैं, गायक कलाकार, संगीतकार और गीतकार अनुपम रॉय हैं।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
5: गोरी तेरे प्यार में इस फिल्म का गीत कमाल खान और नीति मोहन के युगल स्वरों में, कौसर मुनीर का लिखा गीत है, विशाल शेखर की बनाई तर्ज पर।

श्रोताओं, आज 9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार जयदेव पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। और हम आपको आगे बता देते हैं कि 10 आप पिटारा के अंतर्गत सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और आज सुबह 11 विविधा में सृजन भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न संपादित अंश सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह, और इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और मोहित चौहान का गाया, जयदीप साहनी के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत, फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम को 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की, रूपांतर जौहरा मिर्जा का है, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल

0: है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत बेशरम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजें। राजीव बंडवाल ने इस गीत को लिखा है, ललित पंडित ने सजाया है संगीत से।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों की। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग तीसरा आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिल्म से। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, जतिंदर शाह का संगीत।

कुणाल गांजावाला और गायत्री गांजावाला की आवाजों में अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और अजय अतुल ने संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है माय फ्रेंड पिंटो।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज आपके साथ थी पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे ना जाओ शाम पैया परू बीच धारे ना जाओ शाम।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।
1: ఆకాశవాణి సమయం 10 గంటలు వార్తా ముఖ్యాంశాలు వింటారు.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्तपानी के पास माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र

राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मधुरिमा।
1: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: विकसित भारत। लॉन्चिंग नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, मिस्टर मोदी सेड यंग पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड एम्ब्रेस अ हेल्थी लाइफस्टाइल। हैवी रेन्स कंटिन्यू टू रेक हैवक इन केरलम, 8 पीपल रिपोर्टेड किल्ड, थाउजेंड्स शिफ्टेड टू रिलीफ कैंप्स। US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with fourth place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: मिस्टर मोदी सेड ड्रग एडिक्शन डाइवर्ट्स पीपल फ्रॉम देयर गोल्स एंड डिस्टेंसेस देम फ्रॉम अचीविंग देयर ड्रीम्स। ही सेड दैट एडिक्शन नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज फैमिलीज बट ऑल्सो वीकेंस द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन। स्ट्रेसिंग द नीड टू प्रोटेक्ट द यूथ फ्रॉम द मेनेस ऑफ ड्रग्स, ही सेड यंग पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडिक्शन। मिस्टर मोदी रिमाइंडेड दैट द ड्रग्स अल्टीमेटली रुइन करियर्स, डिस्रप्ट फैमिली लाइफ एंड डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल्स।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: मोर देन 1 crore यूथ फ्रॉम 28,000 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and addressed by Prime Minister Narendra Modi. Most of the students from Punjab-based universities, many of whom were NSS volunteers also were of the opinion that it is the collective responsibility

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूं यहां पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में

0: एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार। शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्शलायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफर था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: दादाजान।
1: दादाजान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
0: अब आप ही फैसला फरमाएं।
1: किस बात का फैसला बेटे?
0: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
1: क्या
0: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
1: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
0: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
1: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
0: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
1: हम क्या कह रहे थे?
0: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यहीं रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यहीं रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गईं?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं।

0: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा जल देंगी।
1: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
0: दादी जान।
1: खाना कौन खिलाएगा?
0: दादी जान।
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: दादी जान, क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
0: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
1: आप? दादा जान।
0: हाँ।
1: आप?
0: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
0: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
1: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें।
0: हाँ।
1: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
0: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
1: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
0: लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
0: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यू महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों, चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
0: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लप पे न लाए। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी, मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
2: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसी अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों को खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में

0: गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त पहुंच चुका है। आलीजा,
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों, पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
2: शाही मोहर की वक़्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे, हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
2: बजा फरमा रहे हैं आलीजा, इस मादरे वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
2: आलीजा, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन? लौट आए बख्त खां?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहां की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने एज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेस बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने

0: में हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं, अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
1: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
0: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
1: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
0: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
1: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
0: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजाअत से हिंदुस्तान का ताजो तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
1: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
0: गुस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
1: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
1: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये जईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
3: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
1: बख्त खां, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
1: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
0: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
1: ये कैसा शोर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
3: वो आ गए।
1: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
0: फिरंगी, मैं देखता हूं।
1: मलिकाए आलिया,
4: मेरे सरताज,
1: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
4: बख्त खान को बुलवाएं।
5: बख्त कैन, बख्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में
6: हट।

0: प्रसन्न आया है।
1: मलिका आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था
0: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
1: मत कर, इलाही बख्श।
0: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम, और तुमको मिलेगा सजा।
1: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
0: What did he say?
1: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
0: इज्जत, मर्डर का इज्जत। तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
1: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
0: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। Do you know, बादशाह? तुम जानता है, मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया, और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
1: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
0: I know, हम एटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
2: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है? क्या रख गया है ये फिरंगी इस तख्त में?
1: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर, हमारे लगते जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं।

तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम, भूमिकाओं सहित

0: इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना, शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श, कमल शर्मा, बख्त खां, क्यू एन कश्मीरी, हडसन, किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर, विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन थोड़ी सी बुरी बात,
2: फिर मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बम्बई में हाजिर हो गई,
1: हाँ,
2: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बम्बई, तो बम्बई आना लाजमी था, तो बम्बई पहुंच गई और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू झवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक

0: डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुळकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया। और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था। और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
0: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी। और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई, तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नई नई आई हुई, पर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद, स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं पढ़ूंगी ना, हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी, और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं, और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो, वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई, और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये चार फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ वो, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें कहा दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी, मैंने कहा बात तो सच है, میں نے بات کی تھی، لیکن اس نے آگے نہیں نہ بات کچھ کی، تو میں اکیلی کب تک بات کرتی رہی، لیکن اس سے میری بات نہیں ہوئی. پھر ایک پارٹی میں پونہ میں، وہ مجھے اچھی طرح یاد، چائے پارٹی، اور سبھاش اوسٹ کر کے ہمارے کامن دوست تھے سمیتا کے، میرے جو چترکار ہیں خود، سبھاش کے گھر پارٹی تھی تو سمیتا تھی، اتنے دونوں بات سمیتا. تو میں نے کہا چلو آج میں بات کروں گی اس سے، تو میں پاس گئی، میں نے کہا سمیتا ناراض ہو؟ تو اس نے مجھے

0: बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, एंड दैट वाज इट, दैट वाज द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा। मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। अस्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ, अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं, और एक दिलचस्प बात ये कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं धुआं से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो है अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहाँ चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक तिलस्म है।
1: क्या बात है, क्या बात। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला,
0: जी गौरव अवार्ड
1: जी,
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी तक बधाई
1: नहीं बधाई देता हूँ। वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह वाह।
1: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए, तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की अच्छी अच्छी, ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन नहीं, लोग नहीं भूलने देते है, कहते हैं। और सच कहूं तो मैं भी नहीं भूल पाती हूं, ये भी कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा से किस्सा सुनाती हूँ कि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें B.R. चोपड़ा थे जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया, क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
0: क्या बात है,
1: गुल आनंद भी वहां थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह, कहके उन्होंने कहा कि सही आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क, हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए, और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी टेलीफिल्म कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
0: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
1: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च डाला
0: जी।
1: अच्छा
0: शानदार वाला।
1: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये

0: बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टैंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा। इसे जरूर, तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट एक महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी हवा खुश? मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए उसमें भी, गुल का काफी ये था
1: योगदान,
0: कंट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था,
1: अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी,
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और वहाँ भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ सेम विथ फारूक, सेम विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ 2-3 लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी। मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ओके बाबा, ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो रवि को बेचारे को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को।
1: लेकिन उसने कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर, फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और वो अच्छा आगे बात करेंगे कि कैसे कथा में नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फंसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, सही वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई, और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया, तो क्या रोल किया सईद ने। हाँ, बहुत बहुत ही मजा आ गया, एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन। बहुत
0: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं, जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा,
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी,
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव

0: टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का. तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए. नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विद ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा.
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह से वो किचन
0: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ. फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया. दोस्तों का था वो एक घर. और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका. वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया. तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने. और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर. किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए. मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को.
1: क्या प्यारी बात है, वाह. एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं. जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
0: मजाक उड़ाया, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
1: जी, वो कमाल है. जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है, तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
0: कभी जीरत अमान का आता है,
1: जी जी,
0: कभी देवानंद का. और वो
1: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
0: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
1: जी.
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा में,
1: मैंने तो हाँ कह दी,
0: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वह बहुत मजे मजे
1: शीशा हो या दिल, उसमें तो जो दीप्ति लगी है
0: वो बहुत अच्छा किया ना उसने, बहुत सुंदर किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत. तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
1: जी. ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है.
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना आ जा
1: तीसरी मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था. तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले,
0: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
1: जी.
0: तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया. उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब. तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए. मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं. तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह. और वो बड़ा प्यारा, बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल, ये से सही, श्योर श्योर सही कहता रहे. फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भर आया, उब गया वो भी और उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ. मैंने कहा हाँ. उसमें से तीसरा आदमी देखो, पहचानती हो, वो मैं हूँ. मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो. मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो, मैं नहीं कुछ कहने वाली। तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है।

0: उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
1: ये जब फिल्म पूरी हो गई और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
0: जी,
1: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहां तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बम्बई राजकमल में। हाँ
0: जी जी,
1: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है। मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर, ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर, तो शर्म नहीं आती कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं, मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले, फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब का
0: जी,
1: वेरी वेरी नाइस कॉलेज, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की, अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा, और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो, मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटेस्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा, वो जो चश्मे बद्दूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यो करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यों क्या त्यों क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे

0: ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, कहते है सही हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं हम तो खुश है ना,
1: गजब।
0: इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके, रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है, क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ, कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है, तो अब क्या करें। वो दोनों बहुत मायूस है, और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है ना,
1: वाह वाह
0: वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला।
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन
1: अनाउंसमेंट
0: डबिंग
1: करवाइए।
0: अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है वो। ओके फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, उन्होंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर। मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है। तो मैंने कहा नहीं वो मंगेशी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया, और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो, नो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए किया, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई, यू नो।
1: जी
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वर ये सब
1: सब
0: सब
1: नाम
0: डाला,
1: लिए।
0: और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में, तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: क्या बात है। लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए,
1: जी
0: है नहीं।
1: बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है,
0: हाँ बहुत बहुत
1: चश्मे
0: सुंदर है
1: बतूर।
0: ना,
1: जी
0: बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को, वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ,
1: जी
0: और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है
1: जी
0: और वो वहां पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपनी सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए, कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और
1: वाह
0: काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन
0: क्या।
1: है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई
1: हाँ
0: वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना, लिरिसिस्ट
1: जी
0: फिर राजकमल का म्यूजिक, और
1: हाँ
0: फिर गाने वाले, और
1: हाँ
0: फिर मेरे एक्टर और
1: कमाल।
0: मैं
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।
2: सारे गम बदली सा,
3: नीरा बमा गरी सा,
2: सारे निसा सारे निसा सारे निसा।

0: घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया, ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहाँ से आए बद्र, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, आंसू बह रहे हैं उसके, पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
2: वो भी अगेन वही

0: बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल
0: हाँ, वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, हाँ। वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
1: बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल।
0: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल, तो ये गाना इस
0: अच्छा।
1: इंटरव्यू में प्यार
0: लगावट
1: भी
0: सुनोगे? ओके।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें वो
1: टाइटल्स,
0: एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस, टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ, तो वैसे उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लाइन है।
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल,
0: फूल।
1: जसवंती का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश,
0: हाँ,
1: इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो उसमें सारे अलग अलग
1: भी क्या। और
0: एनिमेशंस।
1: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल।

0: ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा की क्या बताओ
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
0: बिल्कुल
1: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है सुंदर। मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
0: उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
1: कोई टकराव होता था?
0: बहुत बार बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था और बहुत, मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
1: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।
3: उजाले।

से पाक ट्रांसपोर्ट निज़ाम की तौसी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अहम करार दिया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सरसब्ज ट्रांसपोर्ट शोबे की तरक्की के लिए ऐसे प्रोग्राम फ़ायदामंद साबित होते हैं। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों की तरक्की और उनके मफादात का तहफ़ुज़ ही हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि बारिश के पेश नज़र शुमाली तेलंगाना के किसानों को पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में पानी की सतह और पानी के बहाव का जामे तौर पर जायज़ा लिया जा रहा है। एलमपल्ली रिजर्वायर इस वक्त पुराना हिता चेवल्ला प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। यहाँ के पानी को कालेश्वरम पानी के तौर पर तशहीर करना मुनासिब नहीं है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साबिका हुकूमत में धरनी पोर्टल के जरिए अराजियात तक कब्जे करने से मुताल्लुक आने वाले इल्ज़ामात की जामे जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल से मौजूदा भू भारती तक हुए लेन देन की फास्ट ट्रैक तरीक़ेकार के जरिए हुकूमत इसका जायज़ा लेगी। उन्होंने कल हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने एक इंच ज़मीन को भी इम्तनाई फहरिस्त में शामिल नहीं किया है। हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक धरनी पोर्टल के फहरिस्त को पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत असाइंड अराजियात की तमाम जावियों से जायजा लेगी। तेलंगाना के वजीर जुप्पली कृष्णा राव ने रियासत के सियाहती शोबे की तरक्की में ताउन करने हिंदुस्तानी तारकिन वतन पर जोर दिया। अमेरिका में मुनक़दा 19वें अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के इजलास में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में सियाहती मकामात तारीखी वरसे की इमारतों को NRIs को गोद लेते हुए इनको तरक्की देने पर जोर दिया। जुप्पली कृष्णा राव ने कहा कि हैदराबाद में 10 करोड़ रुपयों की लागत से NRI भवन की तामीर के लिए कोशिश की जाएगी। आप आकाशवाणी से खबरें सुन रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हैदराबाद के इलाकई खबरों के शोबे एक्स हैंडल @airnews_HYD को फॉलो करें और एयर न्यूज़ हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब करें। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT Rama Rao ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से इंजीनियरिंग के तलबा और इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने ज़िमन में कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी को एक ख़त लिखा। इस ख़त में KTR ने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ नामुनासिब रिमार्क्स करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने इस मामले में नौजवानों तलबा और इंजीनियर से माफ़ी मांगने का वज़ीर आला और कांग्रेस पार्टी से मतालबा किया। KTR ने कहा कि राहुल गांधी की खामोशी भी वज़ीर आला के रिमार्क्स की तायद के बराबर है। सिकंदराबाद के लश्कर उज्जैनी महांकली बोनाल तकारीब जोश व खरोश व अकीदतमंदी के साथ मनाई जा रही हैं। आज सुबह रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने मंदिर में हुकूमत की जानिब से पहला बोनम पेश किया, जबकि दोपहर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा, पुन्नम प्रभाकर, सीतक्का समेत दीगर कायदीन ने मंदिर में खसूसी पूजा की। मंदिर में बोनम पेश करने के लिए आज सुबह से ही अकीदतमंदों की कतार देखी जा रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने कनाडा में वाक़ कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग से डिजिटल तालीमी तरक्की के लिए एक अहम माहिदा किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मसनूई जहानत पर मबनी तालीम और लक्चरर्स में स्किल्स डेवलपमेंट और तहकीकात के शोबे में दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी ने कहा कि माहिदा यूनिवर्सिटी की तारीख में गेम चेंजर साबित होगा। कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग के CEO प्रोफेसर पेट्रा स्कॉट ने कहा कि यह माहिदा डिजिटल तालीम में BRAOU बैनुल अक्वामी मॉडल के तौर पर खड़ा होगा। रियासत के महकुमे दाखिला ने मकलुआ 7437 मुलाजिमतों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार इस महीने की 19 तारीख से सितंबर की 9 तारीख तक ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। रियासत में वाक़ तमाम सरकारी और खानगी कॉलेजों में इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की तारीख को इस महीने की 15 तारीख तक तौसी दी गई है। इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अभिलाषा अभिनव ने ज़िमन में अहकामात भी जारी किए। पहले के फैसले के मुताबिक दाखिलों की तारीख जुमा को ख़त्म हो गई है। रियासत में मेडिकल कॉलेजेस में MBBS BDS कोर्सेस में दाखिलों के लिए काउंसलिंग का आगाज़ मंगल से शुरू होगा, जबकि क्लासेस का आगाज़ आइंदा माह की 8 तारीख से होगा।
محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آنے والے 3 دنوں کے دوران ریاست کے 18 اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے. ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. عادل آباد, نرمل, نظام آباد, جگتیال, کاماریڈی, میدک اور دیگر اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے بارش کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے پر زور دیا, جبکہ بارش کی وجہ سے سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ

एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मूज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उभर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए जीवन शैली में मामूली बदलाव करने से बहुत लाभ मिल सकता है। जाने जीवन शैली बदलाव चेतन से इस लम्हे प्रोग्राम में। वर्तमान समय में बहुत से लोग अनिद्रा, रात में नींद न आना, बार बार आंख खुलना, नींद के दौरान बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छी नींद आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पाते या नींद पूरी नहीं होती, तो इससे न सिर्फ पूरे दिन थका हुआ महसूस करते, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता है। एक अच्छी और पर्याप्त नींद आपको तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करवाती है। खराब नींद के लिए आपकी जीवन शैली की कई गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती है, जो आपको भरपूर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लाने से रोकती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि के सामने अधिक समय बिताना, एक्सरसाइज न करना, संतुलित आहार न लेना और रात को देर से सोना खराब नींद के कुछ आम कारण है। अब सवाल यह है कि नींद की गुणवत्ता से सुधार करने और अनिद्रा, खराब और बेचैन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं जीवन शैली में बदलाव और कुछ अच्छी आदतों को दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जीवन शैली बदलाव। सुबह कुछ समय धूप में बिताए। अच्छी नींद के लिए कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत कुछ समय धूप में बिताकर करें। ऐसे करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा देने में मदद मिलती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। पैरों को मालिश करें। अगर रात को सोने से 30 मिनट पहले आप घी गर्म करके इससे पैरों और तलवों की मालिश करते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। डिनर में प्रोटीन रिच फूड्स खाएं। ये नींद की गुणवत्ता में सुधार और अच्छी नींद को बढ़ावा देती है, साथ ही हार्मोन्स को संतुलित रखती है। सुबह के समय रात भर पानी में भीगे हुए 4 से 5 बादाम जरूर खाएं, क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो नींद को बढ़ावा देते हैं। आप शाम को स्नैक्स के तौर पर शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। यह शरीर में मेलेटोनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है और एनर्जी बढ़ाता है। आप सुबह भीगे या सूखे अंजीर का सेवन कर सकते हैं, तो ये अच्छी नींद को बढ़ावा देते हैं और हार्मोन्स को संतुलन में रखते हैं। शाम के बाद चाय या कॉफी न पिए। इनमें कैफीन होता है, जो आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और बेचैन नींद का कारण बनता है। नियमित एक्सरसाइज करने से रात में अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है, लेकिन रात में या सोने से पहले एक्सरसाइज करने से बचे। यह शरीर को शांत और स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपको रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन का पाचन और चयापचय आसानी से हो जाता है। डिनर के बाद कैमोमिली टी पिए। इससे नींद को बढ़ावा देने में और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता की भावना कम होती है, मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है। जीवन शैली में इन सरल बदलाव के साथ आप अनिद्रा या नींद न आने की समस्या से आसान

परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो इन्हें रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। नींद हमारे मन और शरीर के उपचार के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो नींद सबसे अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना ऐसे कई काम करते हैं जो हमारी नींद में खलल का कारण बनते हैं, और बेहतर नींद के लिए आपको इनसे बचने की जरूरत है। नींद शक्तिशाली है, जादुई है, उपचारात्मक है और डिटॉक्सिफाइंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सब के अलावा भी नींद के बहुत लाभ है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। परेशान, हल्की और अनुचित नींद आपके उपचार में देरी का कारण बन सकती है। यह आपको फोकस और आपकी कार्यक्षमता को कम कर सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, नींद की कमी आपके पाचन में गड़बड़ कर सकती है, जिसे आप ज्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कम आराम का अनुभव हो सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक्सपर्ट्स की मानो तो नींद में खलल का कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और यह आदत एक दिन बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आदतों को बदले और खुद को सेहतमंद बनाने की ओर एक कदम उठाए। यहाँ हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ उन खराब आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम जाने अनजाने जरूर करते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार कर और अच्छी नींद पाने की कोशिश करेंगे। कैफीन का सेवन सीमित करें। कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो लोग इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, यह उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है। ये बात सही है कि कॉफीन मूड को बेहतर करती है, मगर अत्यधिक मात्रा हानिकारक भी है। दोपहर के बाद कॉफी आपके नींद में खलल डाल सकती है। इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी के आदी है, तो आपको अपने कॉफी और चाय के सेवन को सीमित करने की जरूरत है। एक्सरसाइज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज हमेशा सुबह के समय करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि हल्के व्यायाम आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट करना सही नहीं है। दरअसल शाम का समय हमारे लिए आराम करने के लिए है। शाम के समय भारी व्यायाम से अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं हो सकती है, क्योंकि व्यायाम हमें जागरूक और ऊर्जावान महसूस कराता है। अधिक ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सोते समय बंद करना मुश्किल हो जाता है। भोजन हमेशा समय से करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का भी एक समय निर्धारित होता है। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनुसार हमारा शरीर नहीं करता है, इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच टाइम से करना चाहिए, उसी तरह डिनर भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी नींद की क्वालिटी निर्भर करती है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि तेज नहीं होती, इसीलिए रात के खाने के लिए कुछ हल्की और सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के एक दो घंटे के भीतर भोजन करना सबसे अच्छा है। आजकल लोग सोने जाने से पहले ज्यादा समय अपने फोन पर बिताते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। इससे न सिर्फ हमारी नींद खराब होती है, बल्कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए सोने से एक घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा है। जो पूरे दिन लगातार काम करने के बाद आपके दिमाग को आराम करने में मदद करता है, ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। सुबह की धूप हमें विटामिन डी देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। सुबह या शाम के समय थोड़ी धूप लेना आपको सोते समय बेहतर नींद लेने में मदद करता है। ये आपके शरीर के दैनिक सर्कैडियन रिदम को सेट करने में आपकी मदद करके ऐसा करता है।

0: के जिमनी चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल किए जाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया में पिछले महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने तीनों रियासतों में खुश असलूबी से गिनती कराए जाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए हैं। आसाम में मरदमशुमारी 2027 के तहत खुद ही जाति मालूमात का इंदराज करने का अमल सेल्फ एन्यूमरेशन आज शुरू हो गया। शहरी अब इसके लिए बने पोर्टल se.census.gov.in पर कुंभों और जाति मालूमात ऑनलाइन तरीके से दर्ज कर सकते हैं। खुद ही जाति मालूमात का इंदराज करने के अमल सेल्फ एन्यूमरेशन का मकसद लोगों को उनके घरों से ही मालूमात फराहम करने का मौका देना और मरदमशुमारी को ज्यादा शमूलियाती, आसान और शहरियों पर मरकूज बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: खुद ही जाति मालूमात का इंदराज करने का अमल सेल्फ इन्यूमरेशन 16 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बाद 17 अगस्त से घरों की गिनती का अमल शुरू होगा जो 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मरदमशुमारी के दूसरे मरहले के तहत इंदराज की गई मालूमात की तस्दीक और तौसीक की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने के पहले पीर के मौके पर कल भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्राव माउलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। अकीदतमंदों की सलामती और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मेडिकल टीमें और 24 घंटे एम्बुलेंस खिदमत तैनात की गई हैं। भारत में कोयले की पैदावार की शरह तरक्की पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल 7.51% रही। कोयले की वजारत ने बताया कि मुल्क में इस साल जुलाई के दौरान कोयले की मजमुई पैदावार आरजी आदादोशुमार के मुताबिक 6,57,50,000 टन तक पहुंच गई। वजारत ने यह भी बताया कि पिछले महीने जो कोयला भेजा गया है उससे जुलाई में 17.34% की साल ब साल शरह तरक्की का अंदाजा होता है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने अकवाम मुत्तहदा और बैन अलाक्वामी बिरादरी से जोर देकर कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके में इंसानी हकूक की अबतर होती हुई सूरत हाल के बारे में फौरी इकदाम करें। UKPNP के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी की क्यादत में एक वफद ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में कई मीटिंग्स का इनेकाद किया। वफद ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने यहाँ बैन अलाक्वामी इंसानी हकूक की जिम्मेदारियां पूरी करे और शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद करे। वफद ने उन लोगों की रिहाई का भी मुतालबा किया जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। वफद ने मकबूजा इलाके में इंटरनेट और टेली मवासिलात खिदमात की बहाली, कर्फ्यू हटाने और बैन अलाक्वामी मीडिया नीज इंसानी हकूक से मुतालिक तंजीमों पर से पाबंदी हटाकर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्हें रसाई फराहम करने के लिए भी कहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में सैलाब का पानी बतदरीज घट रहा है, तहम शदीद मुतासर जिलों की सूरत हाल को अब भी चैलेंजों का सामना है। पीने के पानी की किल्लत, फसलों के शदीद नुकसान और मकानात की तबाही ने सैलाब से मुतासर कुंभों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा के बेशतर हिस्सों में 5 अगस्त तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: ओडिशा में सैलाब का पानी बतदरीज कम हो रहा है, ताहम सबसे ज्यादा मुतासरा बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिलों के लोगों को अब भी शदीद मुश्किलात का सामना है। पीने के पानी की किल्लत हो गई है, ट्यूबवेल आलूदा हो गए हैं और पानी में डूबे गांव में सांप और मगरमच्छ दाखिल हो गए हैं, जिससे मुकामी बाशिंदों में शदीद खौफ हरास फैल गया है। फसलों को हुए शदीद नुकसान से किसान दिल बर्दाश्ता हैं और मकानात को हुए नुकसान की वजह से कुंभे अब भी खाना पकाने से कासिर हैं। रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों को तेज कर दिया है और नुकसान भरपाई की जल्द अदायगी के लिए जिला कलेक्टरों से फौरी तौर पर पंचनामे दाखिल करने को कहा है। इंतजामिया का कहना है कि अगले सैलाब का फौरी तौर पर कोई खदशा नहीं है, ताहम भारतीय महकमे मौसमियात ने ज्यादातर जिलों में अगले 3 दिन के दौरान तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: इधर केरला में शदीद बारिश के एक दिन बाद बारिश की शिदत में कमी आने के सबब कई जिलों के लोगों को राहत मिली है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला के 12 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जबकि 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल के लिए अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा की रियासती हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा के लिए पूरी रियासत में अगले 100 हफ्ते के

0: बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। सनखली में आज रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर सावंत ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्यात से पाक नौजवान जरूरी हैं। जनाब सावंत ने नौजवानों से नशीले मादों से दूर रहने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और मुल्क की तामीर में सरगर्मी से तआवुन करने की अपील की। इंडोनेशिया में आज मदुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अफराद अब तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3,000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों लोगों को इनखला पर मजबूर होना पड़ा। साल 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेल कूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवों का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेजबान की छड़ी होस्ट बैटन सौंपी जाएगी, जो साल 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेजबानी की अलामत होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ग्लासगो में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में 13,000 से ज्यादा खेल शायकीन शिरकत करेंगे। ये तकरीब एथलीट्स की कारकर्दगी का एक जश्न है और बहुत से रजाकारों को शुक्रिया कहने का एक मौका। इस तकरीब के दौरान 2030 में अहमदाबाद में कराए जाने वाले 24वें दौलत मुश्तरक खेलों की मुंतकली की रस्म भी अंजाम दी जाएगी, जिसमें स्कॉटलैंड का रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, BEMZ, कैमी बार्नस और सैंडी थॉम अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गुलूकार डेल्टा गुडरेम दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की किसी तकरीब में तीसरी बार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन अपनी गुलूकारी से लोगों को मसहूर करेंगे। दूरदर्शन से इस तकरीब को रवाना नशर किया जाएगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इन खेल मुकाबलों में भारत की कारकर्दगी शानदार रही। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली, जूडो में भी तारीखी कामयाबी रही और माजूर अफराद के खेलकूद मुकाबलों में भी संग मील की हैसियत रखने वाली हसूलियाबियां हुई। एथलेटिक्स में बहुत से तमगे जीते गए, जिसकी वजह से मजमुई तौर पर तमगों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में भारत के 2 टेस्ट मुकाबलों के दौरे में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने घुटने की चोट से अजबर नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की ये सीरीज गाले में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रही है। बुमराह के घुटने की चोट काफी शदीद है, जिसका अंदाजा शुरू में नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के महारत के मरकज में खेलकूद से मुतालिक साइंस की टीम के मुताबिक उन्हें अगले मैचों के पेश नजर फिलहाल इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। SBI की तहकीक में रवां माली बरस की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 41 लापता हो गए हैं। और 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनक़िद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठ रहा है।

0: इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को, एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे ना जाओ शाम पैया परू बीच धारे ना जाओ शाम।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।